0: हेलो एवरीबडी, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, वड़कम, जो आपको पसंद हो वो ले लीजिएगा, बिकॉज दिस इज द इनर वॉइस रेडियो और आप सुन रहे हैं आरजे सिमरन को. बाय द वे, मुझसे कहा गया था ऐसा बोलने के लिए, बट व्हाइल आई वाज टॉकिंग अबाउट द इनर वॉइस रेडियो आई वेंट टू माय कॉन्वेंट. यहाँ पर आकर मुझे अपने स्कूल की याद आ गई एंड दोज वर सम ऑफ द मोस्ट अमेजिंग मेमोरीज ऑफ माय लाइफ. बट यू गाइज आर रियली लकी कि आपके पास इनर वॉइस रेडियो है, एक ऐसा रेडियो स्टेशन जिसे सुनकर ऐसा लगता है कि हमारे सारे सपने, हमारे सारे एम्बिशंस, हमारी सारी उम्मीदें सच हो जाएंगी. आई एम टोटली इन लव विद दिस रेडियो एंड आई वुड लाइक टू साइन ऑफ बाई सिंगिंग टू लाइन्स ऑफ दैट वन सॉन्ग विच कम्स टू माई माइंड, जो हमारे स्कूल में हमेशा हमें सिखाया जाता था. आई वॉज इन अ कॉन्वेंट इन लखनऊ, माउंट कामल, देन आई वॉज इन लोरेटो. Make me a channel of your peace. Where there is hatred, let me sow your love. Where there is injury, your pardon, Lord. And where there's doubt, true faith in you. If you keep listening to the Inner Voice Radio, I'm sure you'll know what I'm talking about.
1: Inner Voice, Niscot Agnell Radio.
2: साथ है मनोज जॉर्ज, जो कि है वायलिनिस्ट, म्यूजिक कंपोजर, जिन्होंने जीता था ग्रैमी अवार्ड फॉर द बेस्ट न्यू एज एल्बम इन 2015, जो हमें बेस्ट विशेस दे रहे हैं.
3: I'm so happy to hear that Niscot and Father Agnell Charities have come up with a new web radio called Inner Voice Radio. This is definitely a milestone in the history of Niscot. And I congratulate the whole team behind this. I'm sure this initiative is going to develop a happy and loving community among us. I wish them all the success and pray to the Almighty to make this venture to spread the message of love and harmony to the whole world. Thank you.
1: Inner Voice, Niscot Agnell Radio.
2: हमें आरजे नावेद हमें बेस्ट विशेस दे रहे हैं.
4: Niscot मीडिया कॉलेज, लाइक आई एंजॉयड अ लॉट. आई कैन से दिस, मुझे अब तक सबसे ज़्यादा मज़ा आया किसी स्टूडेंट से बात करके, क्योंकि उसकी वजह यह है कि मैं बहुत सारे मीडिया इंस्टीट्यूट में जाता हूँ, कॉलेजेस में जाता हूँ, बट यहाँ पे कुछ लोगों ने मुझे चीज़ें बताई हैं कि आपको ऐसे बोलना चाहिए. यू नो, सो एंड आई विल कीप कमिंग. Niscot पे मैं आता रहूँगा और Niscot को कभी मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं हमेशा तैयार हूँ. रेडियो मिर्ची एंड Niscot, लाइक एक चीज़ हो गई, सिंपल एक चीज़. थैंक यू सो मच.
1: Niscot Agnell Radio.

0: हेलो एवरीबडी, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, वड़कम, जो आपको पसंद हो वो ले लीजिएगा, बिकॉज दिस इज द इनर वॉइस रेडियो और आप सुन रहे हैं आरजे सिमरन को. बाय द वे, मुझसे कहा गया था ऐसा बोलने के लिए, बट व्हाइल आई वाज टॉकिंग अबाउट द इनर वॉइस रेडियो आई वेंट टू माय कॉन्वेंट. यहाँ पर आकर मुझे अपने स्कूल की याद आ गई एंड दोज वर सम ऑफ द मोस्ट अमेजिंग मेमोरीज ऑफ माई लाइफ. बट यू गाइज आर रियली लकी कि आपके पास इनर वॉइस रेडियो है, एक ऐसा रेडियो स्टेशन जिसे सुनकर ऐसा लगता है कि हमारे सारे सपने, हमारे सारे एम्बिशंस, हमारी सारी उम्मीदें सच हो जाएंगी. आई एम टोटली इन लव विद दिस रेडियो एंड आई वुड लाइक टू साइन ऑफ बाई सिंगिंग टू लाइन्स ऑफ दैट वन सॉन्ग विच कम्स टू माई माइंड, जो हमारे स्कूल में हमेशा हमें सिखाया जाता था. आई वॉज इन अ कॉन्वेंट इन लखनऊ, माउंट कामल, देन आई वॉज इन लोरेटो. Make me a channel of your peace. Where there is hatred, let me sow your love. Where there is injury, your pardon, Lord. And where there is doubt, true faith in you. If you keep listening to the Inner Voice Radio, I'm sure you'll know what I'm talking about.
1: Inner Voice, Niscott Agnell Radio.
2: और अब हमारे साथ है मनोज जॉर्ज, जो कि है वायलिनिस्ट, म्यूजिक कंपोजर, जिन्होंने जीता था ग्रैमी अवार्ड्स फॉर द बेस्ट न्यू एज एल्बम इन 2015, जो हमें बेस्ट विशेस दे रहे हैं.
3: आई एम सो हैप्पी टू हियर दैट निस्कॉट एंड फादर एग्नेल चैरिटीज हैव कम अप विद अ न्यू वेब रेडियो कॉल्ड इनर वॉइस रेडियो. This is definitely a milestone in the history of Niscott, and I congratulate the whole team behind this. I'm sure this initiative is going to develop a happy and loving community among us. I wish them all the success and pray to the Almighty to make this venture to spread the message of love and harmony to the whole world. Thank you.
1: Niscott Agnell Radio.
2: और अब हमें RJ नावेद हमें बेस्ट विशेस दे रहे हैं.
4: Niscott Media College, like, I enjoyed a lot. I can say this, मुझे अब तक सबसे ज़्यादा मज़ा आया किसी स्टूडेंट से बात करके, क्योंकि उसकी वजह यह है कि मैं बहुत सारे मीडिया इंस्टीट्यूट में जाता हूँ, कॉलेजेस में जाता हूँ, बट यहाँ पे कुछ लोगों ने मुझे चीज़ें बताई हैं कि आपको ऐसे पूछना चाहिए, यू नो. So and I'll keep coming. Niscott पे मैं आता रहूँगा और Niscott को कभी मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं हमेशा तैयार हूँ. रेडियो मिर्ची है Niscott, लाइक एक चीज़ हो गई, सिग्नल हो गई, एक चीज़. थैंक यू सो मच.
1: In a voice, Niscott Agnell Radio.

0: छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: देखो दिल न तोड़ो,
0: और छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे,
0: अज समझे।

0: हो रहना किसी के,
1: क्या करना है जीते।
0: अरे हो रहना किसी के,
1: अंदर है तो याद करोगे, समझे
0: समझे।

0: Liscott Agnell Radio.
1: सुनो और गौर से सुनो, अरे पहले तालियां तो बजाओ। आज रात का मैं आखिरी गाना गा रहा हूं और गाने में ये कहना चाहता हूं कि दुनिया में खुश रहना हो तो मानो मेरी बात।

0: voice. Niscott Agnel Radio.
1: देख चंद्रमा आधा है, रात आधी है, कहीं तेरी मेरी बात भी आधी न।

0: Hello, Miss Scott.
1: Guys, आज 5 सितंबर है और हम जानते हैं कि ये दिन बहुत स्पेशल होता है, पर कोई मुझे ये बताएगा कि हम ये दिन क्यों मनाते हैं?
2: Of course, it's Teachers Day, but have you ever wondered why we celebrate it specifically on 5th September?

0: Every year, 5th September marks the birth anniversary of Dr. Sarvepalli Radhakrishnan. Born on 5th September 1888, became a renowned philosopher, scholar, teacher, and statesman. He was also the first vice president and the second president of India.
1: That's interesting. But unka birthday teacher se kaise connected hai?
2: क्योंकि इसके साथ एक बहुत ही खूबसूरत कहानी जुड़ी हुई है। जब स्टूडेंट्स उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते थे, तब उन्होंने एक सजेशन दिया कि उनका बर्थडे टीचर्स को ऑनर करने का दिन होना चाहिए, क्योंकि वो सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करते हैं।

0: Escott Agnell Radio.
1: Hello, Miss Scott.
2: Guys, आज 5 सितंबर है और हम जानते हैं कि ये दिन बहुत स्पेशल होता है, पर कोई मुझे ये बताएगा कि हम ये दिन क्यों मनाते हैं?
3: Of course, it's Teachers Day, but have you ever wondered why we celebrate it specifically on 5th September?

0: Every year, 5th September marks the birth anniversary of Dr. Sarvepalli Radhakrishnan. Born on 5th September 1888, became a renowned philosopher, scholar, teacher, and statesman. He was also the first vice president and the second president of India.
1: That's interesting. But unka birthday teacher se kaise connected hai?
2: क्योंकि इसके साथ एक बहुत ही खूबसूरत कहानी जुड़ी हुई है। जब स्टूडेंट्स उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते थे, तब उन्होंने एक सजेशन दिया कि उनका बर्थडे टीचर्स को ऑनर करने का दिन होना चाहिए, क्योंकि वो सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करते हैं।

0: Anytime. Good morning, everyone. This is your Melvin from Inner Voice. I like to say something about dreams that always chase in our lives, because dreams is the one who keeps us motivated and keeps us alive to live in this real challenging world. Likewise, a girl called Shifi, a little girl who is shy and reserved, but she enjoys playing soccer. Her friends and classmates ridicule Shifi for her interest in soccer. Nonetheless, she is determined to pursue her passion and become a successful soccer player. Every day after returning from school, Shifi quickly finishes her homework and practices soccer. Her mother understands the love Shifi has for the sport and supports her in every way. When the inter-school competitions are announced at the school, Shifi decides to participate. She takes part in the selection trials and her classmates mock her once again. But they are shocked when Shifi performs well and judges select her to represent the school. And she was awarded the best player of the tournament. Shifi's commitment and hard work impressed and mute every person who mocked at her. Dear friends, determination, strong will and focus can help you achieve even the toughest of goals in spite of all ridicule and challenges by others. Let's dream big and chase it to reach our destination. Wishing you all a good day. Thank you.
1: Kahani Time. Inner Voice, Niscott Agnell Radio. Kahani Time.
2: Hello and welcome to Radio Inner Voice. It's Kahani Time. I'm Sunil here with a new story about our busy life. A brilliant and successful executive was traveling down a neighborhood street. Going a bit too fast in his new Jaguar car. He was watching for kids playing out from between parked cars and slowed down when he thought he saw something. As his car passed, no children appeared. Instead, a brick smashed into the Jag's side door. He slammed on the brakes and spun the Jag back to the spot from where the brick had been thrown. He jumped out of the car, grabbed some kid and pushed him against a parked car, shouting, "What was that all about and who are you?" He got angry and asked, "That's a new car and that brick you threw is going to cost a lot of money. Why did you do it?" "Please, mister, please, I'm sorry. I didn't know that what else to do," pleaded the youngster. "I threw the brick because no one else would stop." Tears were dripping down the boy's chin as he pointed around the parked car. "It's my brother," he said. "He rolled off the curb and fell out of his wheelchair, and I can't lift him up." Sobbing, the boy asked executive, "Would you please help me to get him back into the wheelchair? He's hurt and he's too heavy for me." Moved beyond words, the driver tried to swallow the rapidly swelling lump in his throat. He lifted the young man back into the wheelchair and took out his handkerchief and wiped the scabs and cuts, checking to see that everything was going to be okay. "Thank you and God bless you," the grateful child said to him. The man then watched the little boy push his brother down the sidewalk towards their home. It was a long walk back from the man to his Jaguar. A long, slow walk. He never did repair the side door. He kept the dent to remind him not to go through life so fast, so that someone has to throw a brick at you to get your attention. God whispers in your soul and speaks to your heart. Sometimes when you don't have time to listen, he has to throw a brick at you. It's your choice. Listen to the whisper or wait for the brick.
1: Kahani time. In a voice, Miskot Agnel Radio. Kahani time. हेलो दोस्तों, मैं हूँ सिस्टर मिशेल और आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो में कहानी टाइम। आपकी जिंदगी में कभी ऐसा हुआ है कि आपने जल्दबाजी में कोई काम किया हो और बाद में नुकसान की भरपाई आप ही को देनी पड़ी हो? भाई मेरी जिंदगी में तो कभी कभी ऐसा हुआ है, और कुछ ऐसा ही हमारे एक कारपेंटर की जिंदगी में भी हुआ। तो चलिए आज के कहानी टाइम में सुनते हैं एक ऐसी ही कारपेंटर की कहानी। कहानी टाइम। तो कहानी टाइम में आइए चलते हैं कारपेंटर के घर की तरफ। तो हमारे इस कारपेंटर का नाम था मन्नू। प्यार से सबजन मन्नू चाचा बुलाते थे। मन्नू चाचा को बहुत सालों का कारपेंटरी में एक्सपीरियंस था और वो रिटायर होने वाले थे। और जिस दिन वो रिटायर होने वाले थे, वो अपने मालिक से मिलने गए। मालिक ने मन्नू चाचा की तरफ बड़े प्यार से देखा और बोला, मन्नू चाचा, मैं जानता हूं कि आज आपका रिटायर होने का समय आ गया है। आपने मेरे साथ बहुत सालों से काम किया है, आप हमेशा मेरी तरफ वफादार रहे हैं, और आज मैं आपसे एक बिनती करने वाला हूँ। मन्नू चाचा अपने मालिक की तरफ देखता है और बोलता है, क्या है साहब? मालिक मन्नू चाचा की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, मन्नू चाचा, ये एक आखिरी घर है, छोटा सा प्यारा सा घर है, और मैं चाहता हूँ कि आप इस घर में कारपेंट्री अच्छी तरह से करें। आप करोगे ना, ये आपका आखिरी काम होगा, प्लीज मुझे मना मत करना। मन्नू चाचा बड़े दुखी हो जाते हैं। वो चाहते थे कि वो रिटायर हो जाएं, सुख शांति से अपने घर में बैठे रहें, और ये फिर से उनके मालिक ने उनके बुढ़ापे में फिर एक और काम कर दिया। मन्नू चाचा मुस्कुराते हैं और घूमते हुए चलते हैं उस नए घर की तरफ, पर मन ही मन में वो बड़बड़ाते हैं, मेरा आखिरी दिन था, फिर भी मुझसे काम करा रहे हैं, और गुस्से में जाते हैं उस नए घर की तरफ। और जैसे तैसे दिन गुजरते हैं और मन्नू चाचा बिना अपने इंटरेस्ट के जैसे तैसे कारपेंट्री ख़त्म कर देते हैं। बाहर से तो कारपेंट्री अच्छी दिखाई देती है, लेकिन कारपेंट्री उतनी बढ़िया नहीं रहती, और ये मन्नू चाचा भी जानते थे। मन्नू चाचा गुस्से में थे, रिटायर तो होना था, ज़बरदस्ती काम कर रहे थे। अब क्या होता है, मालिक ये घर देखने आते हैं मन्नू चाचा के काम कंप्लीट होने के बाद, और मालिक एक चाबी का गुच्छा निकालते हैं। मन्नू चाचा काफी देर तक चाबी का गुच्छा देखते हैं। मालिक चाबी का गुच्छा निकालते हैं और मन्नू चाचा के हाथ में देते हैं और कहते हैं, मन्नू चाचा, ये आपके ईमानदारी का इनाम है। मैंने ये घर और यहाँ की कारपेंट्री सब आपको तोहफे में देने के बारे में सोचा था, और ये रहा आपका तोहफा, ये घर, ये सुंदर सा प्यारा सा घर आपके नाम। मन्नू चाचा की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो दंग रह जाते हैं कि मालिक ने इतना बड़ा तोहफा दिया। शर्म से उनकी आंखें लेकिन नीचे झुक जाती हैं। वो जानते हैं कि उन्होंने क्या।
3: In a voice, Niscott Agnell Radio. नमस्कार, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो।
4: मैं हूं एनोश।
5: और मैं हूं जेफरी।
4: तो जेफरी, आज मौसम कुछ अजीब सा नहीं लग रहा, क्या कहते हो?
5: हाँ यार, आज कुछ बढ़िया सा सुनने का मन कर रहा है। पुराने एवरग्रीन सॉन्ग सुने क्या?
4: एवरग्रीन सॉन्ग्स? यार तूने मेरे मन की बात कह दी। आज सुबह से ही मेरा भी मन कर रहा था कि कुछ नॉस्टैल्जिक सुना जाए। तो क्या सुना जाए?
5: तू बता, तेरा फेवरेट कौन सा है?
4: मेरा तो यार एक ही सबसे फेवरेट सॉन्ग है एवरग्रीन्स में, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर।

0: ओ जेफरी, आज रेड शर्ट कैसे पहन के आया? तेरे पीछे कोई सांड नहीं पड़ा क्या?
1: अच्छा, तू खुद पीली पैंट पहन के आ सकता है और मैं रेड शर्ट पहनूं तो तुझे दिक्कत है?
0: यार पीले कलर में क्या दिक्कत है भाई?
1: दिक्कत? पीली पैंट पहन के पीला कद्दू लग रहा है।
0: अबे यार तू उससे लड़ता क्यों रहता है भाई? चल गाने सुनते हैं ना।

0: जुल्फे तेरी।
1: अरे यार पता, जब भी मैं यार चार पांच लोगों के बीच में खड़ा होता हूँ ना, मेरे से बोला नहीं जाता भाई, घबराहट सी होती है।
0: असलियत तो ये है, घबराता मैं भी हूँ
1: यार। हद है भाई, मैं किससे पूछ रहा हूँ यार।

0: अरे राजा सुन।
1: अरे यार भाई गाना तो मस्त था, लेकिन एक बात बता जेफ्री, तू तो आज काला काला क्यों नजर आ रहा है?
2: अरे काले तो क्या हुआ, दिल वाले है बेटे, इस पे गाने बने हुए, गाने समझा गया?
1: अरे भाई गुस्सा मत कर यार, स्टूडियो का लाइट चला गया था, तू मेरे को दिखा नहीं। चल कोई नहीं, गाने सुनते हैं, यही वाला गाना बजा दे।
3: ख्यालों में जय हंगामा, कहां भाग रही थू मैं, या अल्लाह काले से डर गए क्या?
0: हमें काले हैं तो

0: अच्छा अनुष, पता चला दिल वाले हम दिल वाले। अच्छा ये बता, तेरे लास्ट ईयर एग्जाम में कितने नंबर आए थे?
1: जितने भी आए हो, पास तो हो गया था ना। लेकिन आज क्यों पूछ रहा है? एग्जाम तो एक साल पहले था।
0: अरे तेरी शक्ल देख के लग रहा है तू कोरा कागज देख के आया होगा।
1: एटलीस्ट कोरा कागज दिया था, तेरी तरह फादर पे एस से लिखने बोला था और काऊ पे लिख करके तो नहीं आया है ना।

0: और अनुष, मैंने गार्गी से सुना है कि तेरे को भूतों से डर लगता है।
1: नहीं नहीं भाई, मुझे भूतों से, अंधेरे से, सुनसान इलाकों से किसी से डर नहीं लगता। मुझे डर लगता है वो बस तेरी शक्ल से।
2: रात अकेली है,

0: क्या देखता रहता है भाई जेफरी, जाके बात कर रहे हैं ना उससे।
1: नहीं यार, मुझे शर्म आती है।
0: तो दोस्त, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, बस देखते रहो, देखते ही रहो, हजार चाहे लाख बार देख लो, कुछ नहीं होगा जब तक बात नहीं करोगे।

0: अरे अनुष, तूने वादा किया था।
1: क्या वादा किया था?
0: जिम ज्वाइन करेंगे भाई, जिम।
1: यार अगले महीने से करेंगे ना, प्लीज।
0: तू जिस दिन अपना वादा पूरा करेगा ना, उस दिन हम पहाड़ी रखेंगे।
1: पहाड़ी? अरे नहीं भाई नहीं, अगले महीने से पक्का चलेंगे।

0: वाह क्या गाना था। अच्छा अनुष ये बता, ये निब्बा निब्बी क्या होता है?
1: अरे ये सातवीं आठवीं कक्षा के लड़का लड़की होते हैं ना, एक दूसरे को ऐसे कॉल पे बोलते रहते हैं, मेरे बाबू ने थाना थाया, मेरे बाबू ने क्या किया, या सोना मोना, ये सब। तो इन लोग को निब्बा निब्बी बोलते हैं।
0: अरे इन पर्सन तू जानते है क्या किसी निब्बा निब्बी को?
1: हाँ हाँ अपनी क्लास में तो है यार, एक दो है मैं जानता हूँ। लेकिन तू ये सब पूछ क्यों रहा है?
0: अरे क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आज का नहीं 1970 से शुरू हो गया था। इसका एग्जांपल तेरे को ये गाना सुन के पता चल जाएगा।

0: बस यार भाई बहुत हो गया ये शोना मोना।
1: यार ये शोना मोना तो ठीक है, पर इन सब के बीच में जब दूरियां बढ़ जाए तब क्या करना चाहिए?
0: तब तो भाई मैं एक ही चीज कर सकता हूँ, ये गाना सजेस्ट कर सकता हूँ, बहुत ही प्यारा गाना है।

0: Hello, Miss Scott.
1: Guys, आज 5 सितंबर है और हम जानते हैं कि ये दिन बहुत स्पेशल होता है, पर कोई मुझे ये बताएगा कि हम ये दिन क्यों मनाते हैं?
2: Of course, it's Teachers Day, but have you ever wondered why we celebrate it specifically on 5th September?

0: मंजिले अनलिमिटेड।
1: नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, स्वागत है आपका हमारे शो
0: मंजिले अनलिमिटेड।
1: जितना अटपटा ये शो है उससे

0: जाए। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक ऐसी डिश जिसके इंग्रेडिएंट्स सुन के आपके पेट और दिमाग दोनों में टर्बुलेंस आ सकता है। सोशल मीडिया पर हर जगह वायरल हो रही ये डिश का नाम है मैगी मिल्कशेक। नाशिक महाराष्ट्र में मशहूर देसी स्वाद कैफे की स्टार डिश है मैगी मिल्कशेक। मजेदार क्रीमी मिल्कशेक के ऊपर टॉपिंग है मसालेदार वेजिटेबल मैगी की, जिसमें आपको ढूंढने पर मिलेंगे कटी हुई सब्जियां भी। भाई हम में तो दम नहीं है ऐसे डेडली कॉम्बिनेशन कभी ट्राई करने का, और अगर आप में है तो हमें जरूर जानकारी दें ताकि हम भी जान सकें आखिर भारत की जनता में कितना दम है। आज के कॉलर से जानते हैं उनकी अटपटी डिश के अनुभव के बारे में।
1: हेलो,
0: हाय, स्वागत है आपका फूड डिजास्टर्स पे। मैं किससे बात कर रहा हूँ?
1: हाय मैडम, मेरा नाम गार्गी

0: के बारे में सुनने के लिए आप कोई भी दरिंदगी वाला जो भी आपके साथ आपने कोई रेसिपी ट्राई करी हो भारत के स्ट्रीट फूड में, आप वो शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। तो मर्जी आपकी है, आप जो भी बताएं।
1: नाजिर, मैं ना दिल्ली में रहती हूँ, यहाँ पे ना पास ही में एक वैरायटी समोसे वाले की दुकान है और वो वैरायटी समोसे इतनी वैरायटी पे जा चुके हैं कि वो चॉकलेट समोसा बना रहे हैं। अब उस चॉकलेट समोसे को खाने पे इतना गंदा लगता है कि मैं आपको क्या बताऊँ। सोच रहे हो, समोसा जो एक चटपटा है जिसके साथ चटनी मिलती है, हरी चटनी, लाल चटनी, चलो मीठी है वहां तक तो चलता है, लेकिन

0: पूरी समोसा खा लिया, पनीर समोसा खा लिया, लेकिन चॉकलेट समोसा आपको नहीं लगता ये डिजास्टर है?
1: अरे बाप रे, सुन के तो लगता है कि हॉस्पिटल में लोग पड़े होंगे बस ये समोसा खा के। आपने कब ट्राई किया था और आपको किसने सजेस्ट किया इसके बारे में?
0: मेरा एक फ्रेंड है, हम लोग ऐसे घूमने निकले थे एक दिन, वहाँ पे वैरायटी समोसे पे हमने मेन्यू चेक करा तो उसमें एक नई चीज ऐड हुई थी और ऊपर से इसको हाईलाइट करके इसके ऊपर एस्टिक बनाया हुआ था चॉकलेट समोसे के नाम का। तो हमने सोचा कि भाई ये क्या नई चीज आई है, चलो ट्राई करते हैं। हमने ट्राई करा, खा लिया, लेकिन एक बाइट लेते ही उसको पूरा फेंकना पड़ा।
1: अरे बाप रे। धन्यवाद गार्गी आपके कॉल के लिए। ऐसी ही कई अनोखी वन इन अ मिलियन डेडली फूड कॉम्बिनेशंस मैं लेकर आऊंगा सिर्फ आपके लिए। तब तक के लिए अलविदा। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट स्नैडन पिंटो साइनिंग ऑफ।
2: मंजिले अनलिमिटेड।

0: Hello, Miss Scott.
1: गाइस, आज 5 सितंबर है और हम जानते हैं कि ये दिन बहुत स्पेशल होता है, पर कोई मुझे ये बताएगा कि हम ये दिन क्यों मनाते हैं?
2: Of course, it's Teachers Day, but have you ever wondered why we celebrate it specifically on 5th September?

0: Every year, 5th September marks the birth anniversary of Dr. Sarvepalli Radhakrishnan. Born on 5th September 1888, became a renowned philosopher, scholar, teacher, and statesman. He was also the first vice president and the second president of India.
1: That's interesting. But unka birthday teacher se kaise connected hai?
2: क्योंकि इसके साथ एक बहुत ही खूबसूरत कहानी जुड़ी हुई है। जब स्टूडेंट्स उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते थे, तब उन्होंने एक सजेशन दिया कि उनका बर्थडे टीचर्स को ऑनर करने का दिन होना चाहिए, क्योंकि वो सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करते हैं।

0: Hello, Miss Scott.
1: Guys, आज 5 सितंबर है और हम जानते हैं कि ये दिन बहुत स्पेशल होता है, पर कोई मुझे ये बताएगा कि हम ये दिन क्यों मनाते हैं?
2: Of course, it's Teachers Day, but have you ever wondered why we celebrate it specifically on 5th September?
3: Oh!

0: Every year, 5th September marks the birth anniversary of Dr. Sarvepalli Radhakrishnan. Born on 5th September 1888, became a renowned philosopher, scholar, teacher, and statesman. He was also the first vice president and the second president of India.
1: That's interesting. But unka birthday teacher se se kaise connected hai?
2: क्योंकि इसके साथ एक बहुत ही खूबसूरत कहानी जुड़ी हुई है। जब स्टूडेंट्स उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते थे, तब उन्होंने एक सजेशन दिया कि उनका बर्थडे टीचर्स को ऑनर करने का दिन होना चाहिए, क्योंकि वो सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करते हैं।

तू इतना घबराती क्यों है? अपने डर को थोड़ा कम करके तू थोड़ी सी हिम्मत बांध चल। अपने डर को थोड़ा कम करके तू थोड़ी सी हिम्मत बांध जा। बस एक कदम आगे बढ़ाकर उस लक्ष्मण रेखा को लांघ जा। भतेरे मिलेंगे ऐसे मोड़ मोड़ पर, कब तक इनसे छुपती रहेगी? भतेरे मिलेंगे ऐसे मोड़ मोड़ पर, कब तक इनसे छुपती रहेगी? अब बस भी कर अपनी बुजदिली, कब तक ऐसा करती रहेगी? सिर उठाकर चलना सीख, मुंह तोड़ जवाब दे इस जमाने को। सिर उठाकर चलना सीख, मुंह तोड़ जवाब दे इस जमाने को। मैं तो एक कमजोर लड़की हूं, हटा अपने इस बहाने को। एक जीती जागती मिसाल बनकर निजात पा समाज की जंजीरों से। एक जीती जागती मिसाल बनकर निजात पा समाज की जंजीरों से। अच्छी तकदीर की दुआ मांगना बंद कर पीर फकीरों से।

0: इंडिया दिल से।
1: गुड मॉर्निंग इंडिया, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। मैं हूँ रॉबिन्सन। यहाँ पर हम बातें करते हैं सीधे दिल से और ये जुड़ जाती हैं दूसरों के दिल से। यहाँ पे मिलते हैं दिल और दिलों में बस जाता है प्यार, और इसी प्यार के खातिर हम इस सेगमेंट को आपके सामने लेकर आए हैं।
0: दिल से।
1: दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा टाइम इज मनी, लेकिन क्या टाइम सच में मनी है? टाइम केवल पैसे से ही नापा जा सकता है? क्या समय की हमारे लिए कोई और अहमियत नहीं है? एक कहानी मुझे आज यहां पर याद आ रही है, बल्कि एक सचमुच में घटा वाकिया है, और इस वाकिये के जरिए हम देखेंगे कि किस प्रकार समय की जो परिभाषा है टाइम इज मनी, वो हमारे जीवन में बदल सकती है। एक बार एक नौजवान किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए गया। उस जगह पर तो अपने सभी सर्टिफिकेट साथ में लेकर तैयारी करके उस जगह पे पहुंच गया। अब वहां पहुंचने के बाद, कुछ देर इंतजार करने के बाद, जो इंटरव्यू लेने वाले ऑफिसर लोग थे, उन्होंने उसे कैबिन में बुला लिया। अंदर जाकर वहां पर सभी लोग जो इंटरव्यू लेने वाले थे बैठे हुए थे, उनके सामने इसने अपनी फाइल बढ़ाई और बैठ गया। इंटरव्यू लेने वाले लोगों ने जब फाइल खोलकर देखी तो वे काफी खुश हो गए और मन ही मन इसे नौकरी देने का उन्होंने निर्णय कर लिया। फिर उनमें से जो उनका बॉस था, उन्होंने उससे पूछा, आपके इस पढ़ाई के पीछे किसका योगदान है, आपने कैसे

0: इतनी सारी पढ़ाई की? क्या आपके पिता आपको मदद करते थे? तो उस व्यक्ति ने थोड़ी देर मौन रहकर उन्हें कहा, नहीं, मेरे पापा जो है वो तो पहले ही गुजर गए हैं, ये मेरे माँ का योगदान है। मेरी माँ कई जगहों पर जाकर बर्तन माँजा करती थी और उन्होंने मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया और मुझे पढ़ाई करने के लिए मदद की। बॉस ने इसकी बातें सुनने के बाद उससे कहा कि देखो, नौकरी देनी है या ना देनी है ये बात हम कल डिसाइड करेंगे। तुम कल इसी समय आना और हम आपको बताएंगे कि नौकरी आपको मिल सकती है या नहीं मिल सकती। लेकिन उससे पहले आज जब तुम घर जाओगे तब जाकर अपने माँ के हाथों को साफ करना, धोकर साफ करना। इस लड़के को सुनने में ये बात थोड़ी अजीब लगी। क्या बात है, मुझे माँ के हाथ धोने के लिए कहा जा रहा है? क्या नौकरी पाने का ये कोई नया तरीका है? क्या है ये सब? और इस बातों को सोचते हुए वो घर चला गया। दूसरे दिन उसी समय वो लड़का उस कंपनी में वापस आकर बॉस से मिला और नौकरी के लिए दरखास्त करने लग गया।
1: In a voice, a radio.
0: तब उस बॉस ने उससे कहा कि मैं नौकरी तो तुम्हें दूंगा, लेकिन क्या तुमने वो काम किया जो मैंने तुम्हें कल कहा था? तो लड़के ने कहा, हाँ मैंने किया, अपनी माँ के हाथों को मैंने कल धोया। और उस बॉस ने उससे पूछा, तुम्हें क्या दिखाई दिया, क्या मालूम पड़ा? उस लड़के ने कहा, मेरे माँ के हाथों में कई सारी जख्में हो गई थी, काम करते करते, मुझे पालते पालते उसने कभी अपने हाथों की परवाह नहीं की। मैं आज इस मुकाम पर जो पहुंचा हूं वो केवल और केवल मेरी माँ के त्याग के कारण है। मैं आज जो बनने वाला हूं या फिर बनना चाहता हूं उसके पीछे मेरे माँ का ही योगदान है। उस बॉस ने उस लड़के को देखकर उससे कहा, अगर मैं चाहता तो तुम्हें नौकरी कल ही दे सकता था, लेकिन मैं तुम्हें इस बात से वाकिफ कराना चाहता था कि तुम जो इस मुकाम पे पहुंचे हो वो तुम्हारे इन नंबरों के कारण, इन सर्टिफिकेट्स के कारण नहीं, बल्कि तुम्हारी माँ के कारण है। और मुझे खुशी है कि मेरे कंपनी में एक ऐसा लड़का काम करने वाला है जिसे अपने माँ की कदर है। प्यारे दोस्तों, ये जो कहानी है ये हमें कई बातें बताती है। उस औरत को यदि हम ध्यान से उसके बारे में सोचे तो हम पाएंगे कि उसने अपने पूरे समय को अपने बेटे के प्यार के लिए कुर्बान किया। उसने अपना पूरा समय अपने बेटे को आगे बढ़ाने के लिए लगाया और उस प्रकार उसने अपने प्यार को अपने बेटे से जताया। यह बेटा जब अपनी माँ के साथ, भले ही बॉस के कहने पे क्यों ना हो, माँ के साथ थोड़ा समय जब इसने बिताया, उसके हाथों को देखा, तो माँ के प्रति, अपने माँ के लिए उसका जो प्यार है वो उमड़ पड़ा। उसे ये मालूम हुआ कि उसकी माँ ने किस हद तक उससे प्यार किया है। प्यारे दोस्तों, कई बार जब हम अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में पहुंच जाते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं तब हमें पता चलता है कि हमने तो अपनी पूरी जिंदगी पैसे कमाने में ही लगा दी है। इसका असर हमारे बच्चों पे होता है, हम उनके साथ दो पल प्यार से बिताते नहीं हैं, जीवन भर मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं और आखिर में हमें पता चलता है कि जो बच्चे जिनके लिए हमने ये सब किया है वे भी अभी उस पैसे कमाने की साइकिल में चल पड़े हैं। और ऐसे में आखिरी समय में हम जब चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे साथ हो, वे हमारे साथ नहीं होते हैं, क्योंकि वे भी समय के उसी चक्र में फंस गए होते हैं जहां पर समय को केवल पैसों में तोला जाता है। समय पैसों में तोलने की चीज नहीं है, समय रिश्तों और प्रेम के तराजू में तोलने की चीज है। इसीलिए दोस्तों, टाइम इज नॉट मनी, टाइम इज रिलेशनशिप, टाइम इज लव।
2: इंडिया दिल से।
1: Inner Voice, Miskot, Agnel Radio.

तू इतना घबराती क्यों है? अपने डर को थोड़ा कम करके तू थोड़ी सी हिम्मत बांध जा। अपने डर को थोड़ा कम करके तू थोड़ी सी हिम्मत बांध जा। बस एक कदम आगे बढ़ाकर उस लक्ष्मण रेखा को लांग जा। भतेरे मिलेंगे ऐसे मोड़ मोड़ पर, कब तक इनसे छुपती रहेगी? भतेरे मिलेंगे ऐसे मोड़ मोड़ पर, कब तक इनसे छुपती रहेगी? अब बस भी कर अपनी बुजदिली, कब तक ऐसा करती रहेगी? सिर उठाकर चलना सीख, मुंह तोड़ जवाब दे इस जमाने को। सिर उठाकर चलना सीख, मुंह तोड़ जवाब दे इस जमाने को। मैं तो एक कमजोर लड़की हूं, हटा अपने इस बहाने को। एक जीती जागती मिसाल बनकर निजात पा समाज की जंजीरों से। एक जीती जागती मिसाल बनकर निजात पा समाज की जंजीरों से। अच्छी तकदीर की दुआ मांगना बंद कर पीर फकीरों से।

0: Liscott Agnell Radio.
1: Inner Voice, Liscott Agnell Radio.
2: India, Dil Se.
3: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट रॉबिन्सन। आपका स्वागत है इंडिया दिल से में। यहां पर हम बातें करते हैं सीधे दिल से और ये जुड़ जाती हैं दूसरों के दिल से। यहां पे मिलते हैं दिल और दिलों में बस जाता है प्यार, और इसी प्यार के खातिर हम इस सेगमेंट को आपके सामने लेकर आए हैं।
2: दिल से।
3: दोस्तों, कई बार ऐसी बातें होती हैं कि हम दूसरों की कमियां ढूंढने लग जाते हैं, हम दूसरों को नीचे खींचने लग जाते हैं और ढूंढ ढूंढ कर उनकी कमियों को उनके सामने लाते हैं। और इसका मतलब क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है? सिर्फ यह कि हम अपने आप को उनसे बड़ा दिखा दें और उन्हें नीचे दिखा दें। दोस्तों, मुझे एक वाकिया यहाँ पे याद आ रहा है जो कुछ दिनों पहले मैंने बाइबल में पढ़ा था। प्रभु ईसा मसीह अपने चेलों के साथ कहीं जा रहे थे और चलते चलते एक गांव में पहुंच गए। उस गांव में पहुंचते हुए उनके एक दूसरे चेले ने, जो उसी गांव का बाशिंदा था, उन्हें अपने चेलों के साथ घर पे खाने पे बुलाया। और जब वे खाने के लिए उस घर में गए, प्रभु यीशु के चेलों ने बिना हाथ धोए खाना खाना शुरू कर दिया। बेचारे भूखे होंगे, कई किलोमीटर की, कई दिनों की यात्रा पूरी करके वे आए होंगे। जैसे ही उन्होंने खाना खाना शुरू कर दिया, जो आस पड़ोस के लोग प्रभु को देखने के लिए आए थे, उन्होंने आपस में भुनभुनाना शुरू कर दिया। देखिए, चेले एक तरफ खाना खा रहे थे और दूसरे लोग दूसरी तरफ भुनभुना रहे थे। और वे क्या बातें कर रहे थे कि ये कैसे लोग हैं जो बिना हाथ मुंह धोए खाना खाना शुरू कर दिए। उन्हें हाइजीन की कोई चिंता नहीं थी, लेकिन बात यह थी कि उनके समाज में उन दिनों यह एक ट्रेडिशन था। यह उनके ट्रेडिशन की बात थी कि कोई भी व्यक्ति यदि बाहर से आए तो बिना हाथ धोए, बिना शुद्धिकरण किए हुए घर के अंदर जाकर खाना नहीं खा सकता था। और प्रभु यीशु के चेलों ने शुद्धिकरण की इस प्रथा को बिना पूरा किए खाना खाना शुरू कर दिया था। तो इसलिए वे सभी लोग जो वहां पे थे, इस बात से खफा होकर आपस में भुनभुनाने लगे और उन्होंने प्रभु से कहा कि ये कैसे चेले आपने रखे हैं, आप उन्हें क्यों कुछ चीजें बताते क्यों नहीं है, उन्हें कुछ सिखाते क्यों नहीं है। वे बिना शुद्धिकरण किए हुए, बिना अपने आप को धोए हुए खाना खाना शुरू कर दिए। तब प्रभु ने उन्हें कहा कि मनुष्य को केवल बाहरी रूप से नहीं अपितु अंदर से शुद्ध होना चाहिए। मनुष्य को केवल बाहरी रूप से नहीं अपितु अंदर से शुद्ध होना चाहिए।
1: In a voice, a radio.
3: प्यारे दोस्तों, ये एक छोटा सा वाकिया है, लेकिन इससे हमें कई सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। शुद्धिकरण केवल बाहरी रूप से करने से वो शुद्धिकरण नहीं कहलाता है, वो केवल स्वच्छता कहलाती है, वो एक हाइजीन का प्रोसेस बन जाता है, लेकिन शुद्धिकरण उसे हम नहीं कह सकते। इसके तीन पड़ाव हैं। यदि हम ध्यान से देखें तो शुद्धिकरण के तीन पड़ाव हम सोच सकते हैं। पहले, विचारों का शुद्धिकरण। यदि हमारे विचारों में शुद्धि है तो वह शुद्धि हमारे शब्दों में भी आएगी। विचारों का शुद्धिकरण यानी हम कह सकते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ थॉट्स। वी हैव टू प्यूरिफाई आवर थॉट्स एंड इंटेंशंस। यदि हमारे विचार, हमारे थॉट और इंटेंशन शुद्ध है, तो उसका अगला पड़ाव जो है, हमारे शब्द वे भी शुद्ध हो जाएंगे। विचारों का शुद्धिकरण हमारे शब्दों के शुद्धिकरण की ओर हमें बढ़ाता है। हमारे इंटेंशन का शुद्धिकरण हमारे आचारों के, हमारे एक्शंस के शुद्धिकरण की ओर हमें बढ़ाता है। तो देखिए, हमारे विचार शुद्ध होंगे तो हमारे शब्द शुद्ध होंगे, और शब्द शुद्ध होंगे तो आगे चलकर हमारे आचार यानी हमारे कार्यकलाप, हमारे एक्शंस भी शुद्ध होंगे। सो देयर आर 3 स्टेप्स ऑफ प्यूरिफिकेशन। वी सी प्यूरिफिकेशन ऑफ थॉट्स और इंटेंशंस, प्यूरिफिकेशन ऑफ वर्ड्स एंड देन प्यूरिफिकेशन ऑफ एक्शंस। और जब हमारे एक्शंस प्योर हो जाएंगे तो हम अपने एक्शंस के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा प्रेम बांटते फिरेंगे, और वहां पर हम देख सकेंगे कि किस प्रकार हम एक दूसरे के साथ प्यार के साथ रहते हैं। वहां पर सभी प्रकार की कमियों को हम भूल जाएंगे। यदि किसी के अंदर कोई कमी भी है तो हमारे कार्यों, विचारों और शब्दों की शुद्धि होने के कारण हम उस कमी को अच्छाई में बदल सकते हैं। हम अपने उस भाई को या बहन को उस कमी से उभरने के लिए मदद कर सकते हैं। और इसीलिए हमें चाहिए कि हम अपने विचारों में, अपने शब्दों में और अपने आचरण में शुद्धता लाएं, ताकि प्रेम के हम साक्षी बन सकें। तो ये थी दास्तां मोहब्बत इंडिया दिल से में। कल फिर मिलेंगे एक नई दास्तां के साथ, एक नए विचार के साथ, जो हमें मोहब्बत में, प्रेम में, प्यार में आगे बढ़ते रखें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, आपके दोस्त, आपके होस्ट रॉबिन्सन को। बाय बाय।
2: इंडिया दिल से।

0: Every year, 5th September marks the birth anniversary of Dr. Sarvepalli Radhakrishnan. Born on 5th September 1888, became a renowned philosopher, scholar, teacher, and statesman. He was also the first vice president and the second president of India.
1: That's interesting. But unka birthday teacher se kaise connected hai?
2: क्योंकि इसके साथ एक बहुत ही खूबसूरत कहानी जुड़ी हुई है। जब स्टूडेंट्स उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते थे तब उन्होंने एक सजेशन दिया कि उनका बर्थडे टीचर्स को ऑनर करने का दिन होना चाहिए, क्योंकि वो सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करते हैं।

0: इंटरेस्टिंग, बट उनका बर्थडे टीचर्स से कैसे कनेक्टेड है?
1: क्योंकि इसके साथ एक बहुत ही खूबसूरत कहानी जुड़ी हुई है। जब स्टूडेंट्स उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते थे, तब उन्होंने एक सजेशन दिया कि उनका बर्थडे टीचर्स को ऑनर करने का दिन होना चाहिए, क्योंकि वो सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करते हैं।

0: Every year, 5th September marks the birth anniversary of Dr. Sarvepalli Radhakrishnan. Born on 5th September 1888, became a renowned philosopher, scholar, teacher, and statesman. He was also the first vice president and the second president of India.
1: That's interesting. But unka birthday teacher se kaise connected hai?
2: क्योंकि इसके साथ एक बहुत ही खूबसूरत कहानी जुड़ी हुई है। जब स्टूडेंट्स उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते थे, तब उन्होंने एक सजेशन दिया कि उनका बर्थडे टीचर्स को ऑनर करने का दिन होना चाहिए, क्योंकि वो सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करते हैं।

0: Hello, Miss Scott.
1: Guys, आज 5 सितंबर है और हम जानते हैं कि ये दिन बहुत स्पेशल होता है, पर कोई मुझे ये बताएगा कि हम ये दिन क्यों मनाते हैं?
2: Of course, it's Teachers Day, but have you ever wondered why we celebrate it specifically on 5th September?

0: Every year, 5th September marks the birth anniversary of Dr. Sarvepalli Radhakrishnan. Born on 5th September 1888, became a renowned philosopher, scholar, teacher, and statesman. He was also the first vice president and the second president of India.
1: That's interesting. But unka birthday teacher se kaise connected hai?
2: क्योंकि इसके साथ एक बहुत ही खूबसूरत कहानी जुड़ी हुई है। जब स्टूडेंट्स उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते थे, तब उन्होंने एक सजेशन दिया कि उनका बर्थडे टीचर्स को ऑनर करने का दिन होना चाहिए, क्योंकि वो सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करते हैं।

0: भी हुआ। तो चलिए आज के कहानी टाइम में सुनते हैं एक ऐसी ही कारपेंटर की कहानी। कहानी टाइम। तो कहानी टाइम में आइए चलते हैं कारपेंटर के घर की तरफ। तो हमारे इस कारपेंटर का नाम था मन्नू। प्यार से सबजन मन्नू चाचा बुलाते थे। मन्नू चाचा को बहुत सालों का कारपेंट्री में एक्सपीरियंस था और वो रिटायर होने वाले थे। और जिस दिन वो रिटायर होने वाले थे, वो अपने मालिक से मिलने गए। मालिक ने मन्नू चाचा की तरफ बड़े प्यार से देखा और बोला, मनु चाचा, मैं जानता हूँ कि आज आपका रिटायर होने का समय आ गया है। आपने मेरे साथ बहुत सालों से काम किया है, आप हमेशा मेरी तरफ वफादार रहे हैं और आज मैं आपसे एक बिनती करने वाला हूँ। मनु चाचा अपने मालिक की तरफ देखता है और बोलता है, क्या है साहब? मालिक मनु चाचा की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, मनु चाचा, ये एक आखिरी घर है, छोटा सा प्यारा सा घर है और मैं चाहता हूँ कि आप इस घर में कारपेंट्री अच्छी तरह से करें। आप करोगे ना, ये आपका आखिरी काम होगा, प्लीज मुझे मना मत करना। मन्नू चाचा बड़े दुखी हो जाते हैं। वो चाहते थे कि वो रिटायर हो जाएं, सुख शांति से अपने घर में बैठे रहें और ये फिर से उनके मालिक ने उनके बुढ़ापे में फिर एक और काम कर दिया। मन्नू चाचा मुस्कुराते हैं और घूमते हुए चलते हैं उस नए घर की तरफ। पर मन ही मन में वो बड़बड़ाते हैं, मेरा आखिरी दिन था, फिर भी मुझसे काम करा रहे हैं। और गुस्से में जाते हैं उस नए घर की तरफ। और जैसे तैसे दिन गुजरते हैं और मन्नू चाचा बिना अपने इंटरेस्ट के जैसे तैसे कारपेंट्री ख़त्म कर देते हैं। बाहर से तो कारपेंट्री अच्छी दिखाई देती है, लेकिन कारपेंट्री उतनी बढ़िया नहीं रहती और ये मन्नू चाचा भी जानते थे। मन्नू चाचा गुस्से में थे, रिटायर तो होना था, जबरदस्ती काम कर रहे थे। अब क्या होता है, मालिक ये घर देखने आते हैं मन्नू चाचा के काम कंप्लीट होने के बाद, और मालिक एक चाबी का गुच्छा निकालते हैं। मन्नू चाचा काफी देर तक चाबी का गुच्छा देखते हैं। मालिक चाबी का गुच्छा निकालते हैं और मन्नू चाचा के हाथ में देते हैं और कहते हैं, मन्नू चाचा, ये आपके ईमानदारी का इनाम है। मैंने ये घर और यहाँ की कारपेंट्री सब आपको तोहफे में देने के बारे में सोचा था और ये रहा आपका तोहफा, ये घर, ये सुंदर सा प्यारा सा घर आपके नाम। मन्नू चाचा की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो दंग रह जाते हैं कि मालिक ने इतना बड़ा तोहफा दिया। शर्म से उनकी आंखें लेकिन नीचे झुक जाती हैं। वो जानते हैं कि उन्होंने क्या किया था। हमारे साथ भी जिंदगी में कभी कभी ऐसा हो जाता है। हम समझते हैं कि टेक फॉर ग्रांटेड करना चल जाता है, जिंदगी चलती रहती है, पर ऐसा नहीं होता। कुछ इम्पॉर्टेंट चीजों में टेक फॉर ग्रांटेड करना बाद में नुकसानदेही हो जाता है। तो ये थी हमारे आज की कहानी की प्यारी सी सीख। कहानी टाइम। कहानी टाइम।
1: Inner Voice, Miss Scott, Agnell Radio.
0: Kahani Time. Once upon a time, a daughter complained to her father that her life was miserable and that she didn't know how she was going to make it. She was tired of fighting and struggling. Just as one problem was solved, another one soon followed. Her father, a chef, took her to the kitchen and made her sit there. He filled 3 pots with water and placed them all on a gas with a high flame. Once the water began to boil, he put potatoes

0: Hello, Miss Scott.
1: Guys, आज 5 सितंबर है और हम जानते हैं कि ये दिन बहुत स्पेशल होता है, पर कोई मुझे ये बताएगा कि हम ये दिन क्यों मनाते हैं?
2: Of course, it's Teachers Day, but have you ever wondered why we celebrate it specifically on 5th September?

0: Every year, 5th September marks the birth anniversary of Dr. Sarvepalli Radhakrishnan. Born on 5th September 1888, became a renowned philosopher, scholar, teacher, and statesman. He was also the first vice president and the second president of India.
1: That's interesting. But उनका बर्थडे टीचर से कैसे कनेक्टेड है?
2: क्योंकि इसके साथ एक बहुत ही खूबसूरत कहानी जुड़ी हुई है। जब स्टूडेंट्स उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते थे, तब उन्होंने एक सजेशन दिया कि उनका बर्थडे टीचर्स को ऑनर करने का दिन होना चाहिए, क्योंकि वो सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करते हैं।

0: Every year, 5th September marks the birth anniversary of Dr. Sarvepalli Radhakrishnan. Born on 5th September 1888, became a renowned philosopher, scholar, teacher, and statesman. He was also the first vice president and the second president of India.
1: That's interesting. But unka birthday teacher se kaise connected hai?
2: क्योंकि इसके साथ एक बहुत ही खूबसूरत कहानी जुड़ी हुई है। जब स्टूडेंट्स उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते थे, तब उन्होंने एक सजेशन दिया कि उनका बर्थडे टीचर्स को ऑनर करने का दिन होना चाहिए, क्योंकि वो सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करते हैं।

0: Hello, Miss Scott.
1: Guys, आज 5 सितंबर है और हम जानते हैं कि ये दिन बहुत स्पेशल होता है, पर कोई मुझे ये बताएगा कि हम ये दिन क्यों मनाते हैं?
2: Of course, it's Teachers Day, but have you ever wondered why we celebrate it specifically on 5th September?

0: Every year, 5th September marks the birth anniversary of Dr. Sarvepalli Radhakrishnan. Born on 5th September 1888, became a renowned philosopher, scholar, teacher, and statesman. He was also the first vice president and the second president of India.
1: That's interesting. But unka birthday teacher se kaise connected hai?
2: क्योंकि इसके साथ एक बहुत ही खूबसूरत कहानी जुड़ी हुई है। जब स्टूडेंट्स उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते थे, तब उन्होंने एक सजेशन दिया कि उनका बर्थडे टीचर्स को ऑनर करने का दिन होना चाहिए, क्योंकि वो सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करते हैं।

0: She looked at me with that familiar desire. Eyes lit up.
1: Hello, Miss Scott.
2: गाइस, आज 5 सितंबर है और हम जानते हैं कि ये दिन बहुत स्पेशल होता है, पर कोई मुझे ये बताएगा कि हम ये दिन क्यों मनाते हैं?
3: Of course, it's Teachers Day, but have you ever wondered why we celebrate it specifically on 5th September?

0: Every year, 5th September marks the birth anniversary of Dr. Sarvepalli Radhakrishnan. Born on 5th September 1888, became a renowned philosopher, scholar, teacher, and statesman. He was also the first vice president and the second president of India.
1: That's interesting. But unka birthday teacher se kaise connected hai?
2: क्योंकि इसके साथ एक बहुत ही खूबसूरत कहानी जुड़ी हुई है। जब स्टूडेंट्स उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते थे, तब उन्होंने एक सजेशन दिया कि उनका बर्थडे टीचर्स को ऑनर करने का दिन होना चाहिए, क्योंकि वो सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करते हैं।

0: Escott Agnell Radio.
1: Kahani Time.
2: Good morning, everyone. This is your Melvin from Inner Voice. I like to say something about dreams that always chase in our lives, because dreams is the one who keeps us motivated and keeps us alive to live in this real challenging world. Likewise, a girl called Shifi, a little girl who is shy and reserved, but she enjoys playing soccer. Her friends and classmates ridicule Shifi for her interest in soccer. Nonetheless, she is determined to pursue her passion and become a successful soccer player. Every day after returning from school, Shifi quickly finishes her homework and practices soccer. Her mother understands the love Shifi has for the sport and supports her in every way. When the inter-school competitions are announced at the school, Shifi decides to participate. She takes part in the selection trials and her classmates mock her once again. But they are shocked when Shifi performs well and judges select her to represent the school. And she was awarded the best player of the tournament. Shifi's commitment and hard work impressed and mewed every person who mocked at her. Dear friends, determination, strong will and focus can help you achieve even the toughest of goals in spite of all ridicule and challenges by others. Let's dream big and chase it to reach our destination. Wishing you all a good day. Thank you.
1: Kahani Time. Inner Voice. Escott Agnell Radio. Kahani Time.
3: Hello and welcome to Radio Inner Voice. It's Kahani Time. I'm Sunil here with a new story about our busy life. A brilliant and successful executive was traveling down a neighborhood street. Going a bit too fast in his new Jaguar car. He was watching for kids, playing out from between parked cars and slowed down when he thought he saw something. As his car passed, no children appeared. Instead, a brick smashed into the Jag's side door. He slammed on the brakes and spun the Jag back to the spot from where the brick had been thrown. He jumped out of the car, grabbed some kid and pushed him against a parked car, shouting, "What was that all about and who are you?" He got angry and asked, "That's a new car and that brick you threw is going to cost a lot of money. Why did you do it?" "Please, mister, please, I'm sorry. I didn't know that what else to do," pleaded the youngster. "I threw the brick because no one else would stop." Tears were dripping down the boy's chin as he pointed around the parked car. "It's my brother," he said. "He rolled off the curb and fell out of his wheelchair, and I can't lift him up." Sobbing, the boy asked executive, "Would you please help me to get him back into the wheelchair? He's hurt and he's too heavy for me." Moved beyond words, the driver tried to swallow the rapidly swelling lump in his throat. He lifted the young man back into the wheelchair and took out his handkerchief and wiped the scabs and cuts, checking to see that everything was going to be okay. "Thank you, and God bless you," the grateful child said to him. The man then watched the little boy push his brother down the sidewalk towards their home. It was a long walk back from the man to his Jaguar, a long, slow walk. He never did repair the side door. He kept the dent to remind him not to go through life so fast so that someone has to throw a brick at you to get your attention. God whispers in your soul and speaks to your heart. Sometimes when you don't have time to listen, He has to throw a brick at you. It's your choice. Listen to the whisper or wait for the brick.
1: Kahani Time. In a Voice. Discord Agnel Radio.
4: हेलो दोस्तों, मैं हूँ सिस्टर मिशेल और आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो में कहानी टाइम। आपकी जिंदगी में कभी ऐसा हुआ है कि आपने जल्दबाजी में कोई काम किया हो और बाद में नुकसान की भरपाई आप ही को देनी पड़ी हो? भाई मेरी जिंदगी में तो कभी कभी ऐसा हुआ है, और कुछ ऐसा ही हमारे एक कारपेंटर के जिंदगी में भी हुआ। तो चलिए आज के कहानी टाइम में सुनते हैं एक ऐसी ही कारपेंटर की कहानी। कहानी टाइम। तो कहानी टाइम में आइए चलते हैं कारपेंटर के घर की तरफ। तो हमारे इस कारपेंटर का नाम था मन्नू। प्यार से सबजन मन्नू चाचा बुलाते थे। मन्नू चाचा को बहुत सालों का कारपेंट्री में एक्सपीरियंस था और वो रिटायर होने वाले थे। और जिस दिन वो रिटायर होने वाले थे, वो अपने मालिक से मिलने गए। मालिक ने मन्नू चाचा की तरफ बड़े प्यार से देखा और बोला, मन्नू चाचा, मैं जानता हूँ कि आज आपका रिटायर होने का समय आ गया है। आपने मेरे साथ बहुत सालों से काम किया है, आप हमेशा मेरी तरफ वफादार रहे हैं, और आज मैं आपसे एक विनती करने वाला हूँ। मन्नू चाचा अपने मालिक की तरफ देखता है और बोलता है, क्या है साहब? मालिक मन्नू चाचा की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, मन्नू चाचा, ये एक आखिरी घर है, छोटा सा प्यारा सा घर है, और मैं चाहता हूँ कि आप इस घर में कारपेंट्री अच्छी तरह से करें। आप करोगे ना, ये आपका आखिरी काम होगा, प्लीज़ मुझे मना मत करना। मन्नू चाचा बड़े दुखी हो जाते हैं। वो चाहते थे कि वो रिटायर हो जाएं, सुख शांति से अपने घर में बैठे रहें, और ये फिर से उनके मालिक ने उनके बुढ़ापे में फिर एक और काम कर दिया। मन्नू चाचा मुस्कुराते हैं और घूमते हुए चलते हैं उस नए घर की तरफ। पर मन ही मन में वो बड़बड़ाते हैं, मेरा आखिरी दिन था, फिर भी मुझसे काम करा रहे हैं, और गुस्से में जाते हैं उस नए घर की तरफ। और जैसे तैसे दिन गुजरते हैं और मन्नू चाचा बिना अपने इंटरेस्ट के जैसे तैसे कारपेंट्री ख़त्म कर देते हैं। बाहर से तो कारपेंट्री अच्छी दिखाई देती है, लेकिन कारपेंट्री उतनी बढ़िया नहीं रहती, और ये मन्नू चाचा भी जानते थे। मन्नू चाचा गुस्से में थे, रिटायर तो होना था, ज़बरदस्ती काम कर रहे थे। अब क्या होता है, मालिक ये घर देखने आते हैं मन्नू चाचा के काम कंप्लीट होने के बाद, और मालिक एक चाबी का गुच्छा निकालते हैं। मन्नू चाचा काफ़ी देर तक चाबी का गुच्छा देखते हैं। मालिक चाबी का गुच्छा निकालते हैं और मन्नू चाचा के हाथ में देते हैं और कहते हैं, मन्नू चाचा, ये आपके ईमानदारी का इनाम है। मैंने ये घर और यहाँ की कारपेंट्री सब आपको तोहफे में देने के बारे में सोचा था, और ये रहा आपका तोहफा, ये घर, ये सुंदर सा प्यारा सा घर आपके नाम। मन्नू चाचा की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो दंग रह जाते हैं कि मालिक ने इतना बड़ा तोहफा दिया। शर्म से उनकी आंखें लेकिन नीचे झुक जाती हैं। वो जानते हैं कि उन्होंने क्या किया था। हमारे साथ भी जिंदगी में कभी कभी ऐसा हो जाता है। हम समझते हैं कि टेक फॉर ग्रांटेड करना चल जाता है, जिंदगी चलती रहती है, पर ऐसा नहीं होता। कुछ इम्पोर्टेंट चीजों में टेक फॉर ग्रांटेड करना बाद में नुकसानदेही हो जाता है। तो ये थी हमारे आज की कहानी की प्यारी सी सीख। कहानी टाइम। कहानी टाइम।
0: Inner Voice, Miskot, Agnell Radio.
4: Kahani time. Once upon a time, a daughter complained to her father that her life was miserable and that she didn't know how she was going to make it. She was tired of fighting and struggling. Just as one problem was solved, another one soon followed. Her father, a chef, took her to the kitchen and made her sit there. He filled 3 pots with water and placed them all on a gas with a high flame. Once the water began to boil, he put potatoes in one pot, eggs in the second one, and coffee powder in the third pot. He let them boil without uttering a word to his daughter. The daughter moaned and impatiently waited, wondering what he was doing. After 20 minutes, he turned off the gas burners and took the potatoes out of the pot and placed them in a bowl. He pulled the boiled eggs out and placed them in another bowl. He then ladled the coffee out and placed it in a cup. Turning to her, he asked, "Child, what do you see?" "Potatoes, eggs, and coffee," she hastily replied. "Look closer," he said, "and touch the potatoes." She did, and said, "They have become